शांति शांति शांति ओम तद्विष्णो परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरा ततं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रुवागुं ससमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं हरिः ॐ शान्ति शान्ति।